0: और ऐ बंदे, जिस चीज का तुझे इल्म नहीं उसके पीछे न पड़, के कान और आंख और दिल इन सब जवारे से जरूर बाजपुर्स होगी।
1: वला तमशी फिल अर्ض मरहा इन्नक लन तغرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا।
0: और जमीन पर अकड़कर और तनकर मत चल, कि तू जमीन को फाड़ तो नहीं डालेगा और न लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा।
1: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها।
0: इन सब आदतों की बुराई तेरे परवरदिगार के नजदीक बहुत नापसंद है।
1: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة।

0: ये लोग जब तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो जिस नीयत से ये सुनते हैं हम उसे खूब जानते हैं, और जब ये सरगोशियां करते हैं यानी जब जालिम कहते हैं कि तुम तो एक ऐसे शख्स की पैरवी करते हो जिस पर जादू किया गया है।
1: انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
0: देखो उन्होंने किस किस तरह की तुम्हारे बारे में बातें बनाई हैं, सो ये गुमराह हो रहे हैं और रास्ता नहीं पा सकते।

0: रसूला,
1: या तुम्हारा सोने का घर हो या तुम आसमान पर चढ़ जाओ, और हम तुम्हारे चढ़ने को भी नहीं मानेंगे जब तक कि कोई किताब न लाओ जिसे हम पढ़ भी लें। कह दो कि मेरा परवरदिगार पाक है, मैं तो सिर्फ एक पैगाम पहुंचाने वाला इंसान हूँ।

ऐसे लोगों के लिए हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें उनके महलों के नीचे नहरें बह रही हैं, उनको वहां सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और वो बारीक दीबा और अतलस के सब्ज कपड़े पहना करेंगे और तख्तों पर तकिए लगाकर बैठा करेंगे। क्या खूब बदला और क्या खूब आरामगाह है।

और इस तरह उस शख्स को उनकी पैदावार मिलती रहती थी। तो एक दिन जबकि वो अपने दोस्त से बातें कर रहा था, कहने लगा कि मैं तुमसे माल और दौलत में भी ज्यादा हूँ और जत्थे और जमात के लिहाज से भी ज्यादा इज्जत वाला हूँ।

और उसके मेवों को अजाब ने आ घेरा और वो अपनी छतरियों पर गिर कर रह गया, तो जो माल उसने उस पर खर्च किया था उस पर हसरत से हाथ मलने लगा और कहने लगा कि काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न बनाता।

0: उसने कहा कि भला आपने देखा कि जब हमने पत्थर के पास आराम किया था तो मैं मछली वहीं भूल गया और मुझे आपसे उसका जिक्र करना शैतान ने भुला दिया और उसने अजब तरह से दरिया में अपना रास्ता लिया।
1: قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا
0: موسى نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے
1: فوجا

0: तो दोनों चल पड़े। यहां तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो खिज्र ने कश्ती को फाड़ डाला। मूसा ने कहा, क्या आपने इसको इसलिए फाड़ा है कि सवारों को गर्क कर दे? ये तो आपने बड़ी अजीब बात की।
1: قال الم اقول انك لن تستطيع معي صبرا।
0: खिज्र ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र न कर सकोगे?
1: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا।
0: मूसा ने कहा कि जो भूल मुझसे हुई उस पर मुआखिजा न कीजिए और मेरे मामले में मुझ पर मुश्किल न डालिए।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، UCP نمبر 1.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
2: سنتے رہیے.
4: Assalamu alaikum. This is Muhammad Zainul Abidin from Mechanical Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Central Punjab, Lahore.
5: And this is Dr. Gulrez Ahmed from Mechanical Engineering Department. I am an associate professor over there.
4: Today, we'll be talking about outcome-based education and why it's important all over the world and why it's being implemented in different universities in Pakistan as well. And our guest speaker, Dr. Gulrez Ahmed, will be explaining about outcome-based education and its different modules and what are actually the ongoings in this particular field.
5: Right. So we will start with the OBE, which is known as outcome-based education. In my opinion, in Pakistan, students are being taught curriculum and the curriculum is not being applied so that their skills are managed and their skills have to be like assessed. So it is better to have a system in which they can be assessed, as well as there is an analysis at the end that have they achieved those skills.
4: Dr. Sir, please can you explain how outcome-based education is different from traditional education process?
5: So the traditional is basically teacher is giving input to the students and they are assessing through the assessments. And if we talk about outcome-based education, it is basically student-centered and it is not the typical thing. And in this, I think it is the problem with our usual system in which when we are doing primary and secondary education over there, these are not being applied correctly. And I think we should improve the system of our primary as well as secondary education. And in order to do that, we should have some rubrics to follow. And those rubrics will basically assess whether the students have achieved something out of their education. Something means the skills.
4: Okay, so as you have told, to my understanding, it means that not just relying on cramming different, chapters or stubbing down different kind of, knowledge down your throats. It's basically, it depends on the level of skill you achieve. Mm-hmm. The students are, outcome-based education is basically centered around what kind of skill and what level of skill is basically achieved.
5: Yes.
4: Okay, thank you so much, Arsab. Okay, so there is also an International Engineering Alliance. Can you tell us about that, sir?
5: There are like different organizations around the world which have helped us as engineers to basically apply outcome-based education. To my knowledge, like there are 4 educational accords. One is Washington Accord. The second is Sydney Accord, Dublin Accord, as well as Abbott. So Abbott and Washington Accord are the main ones. And we as engineers in Pakistan, the Pakistan Engineering Council has MOUs with Washington Accord and they have applied Washington Accord in its true spirit.
4: اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کائنڈلی بتا سکتے ہیں کہ جو او بی ای ہے آؤٹکم بیسڈ ایجوکیشن یہ ہمارے جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن پروسیس ہے جو سالہ سال سے چلتا آ رہا ہے اس سے کس طرح ڈفرینٹ ہے یہ
5: OBE सिस्टम अगर मैं इसकी बात करूं तो वो बेसिकली क्या करता है कि असेसमेंट्स तो होनी है, जो हमारे पास टेस्ट्स क्विजेस वगैरह होने हैं स्टूडेंट्स के और जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह करने हैं वो तो उसी ट्रेडिशनल उसके अंदर चल रहा होता है। बट OBE सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने उन असेसमेंट्स को मैप करते हैं, कोर्सेज को मैप करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ, कुछ आउटकम्स के साथ, कुछ स्किल्स के साथ, ताकि हम उन्हें असेस कर सकें। असेस किस तरह करेंगे? बेसिकली हम बताएंगे कि स्टूडेंट ने ब्लड से एक असाइनमेंट की है तो उस असाइनमेंट में उसने क्या अचीव किया है, उसको हमने किस तरह असेस किया, उसको उसकी असेसमेंट का लेवल क्या था और उस असेसमेंट लेवल पे उसने उस स्किल को अचीव किया है या नहीं किया। ये हमारा बेसिकली सिस्टम है जिसको हम OBE कहते हैं।
4: इट्स गुड। अच्छा, अब जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि एक इंटरनेशनल अलायंस बनी है, ठीक है, इंजीनियरिंग की फील्ड की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो, कि उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं OBE के ऊपर।
5: OBE के अंदर बेसिकली यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट इट, जो अलायंसेज हैं वो मेरे पास चार किस्म की हैं, जो चार मेजर बॉडीज हैं अराउंड द वर्ल्ड जो ये काम कर रही हैं, जो इंजीनियरिंग को हेल्प आउट कर रही हैं। नॉट जस्ट इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग को देखते हुए जो इंजीनियरिंग के अंदर हमने ये अलायंसेस की हैं, उन अलायंसेस को देखते हुए बाकी भी अदर डिसिप्लिनस भी इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर मैं इनकी अलायंसेस की बात करूँ तो देर आर फोर मेजर अलायंसेस जिसके अंदर वॉशिंगटन अकॉर्ड है, सिडनी अकॉर्ड है, डुबलिन अकॉर्ड है और एबट है। वॉशिंगटन अकॉर्ड को इंजीनियरिंग काउंसिल इज़ फॉलोइंग इन इट्स ट्रू स्पिरिट। और अगर मैं इसकी बात करूं कि वॉशिंगटन अकॉर्ड क्या है, वो बेसिकली अभी हम थोड़ी देर में इसको डिस्कस फर्दर करेंगे कि वॉशिंगटन अकॉर्ड क्या है, तो वो इज़ वन ऑफ द सिस्टम्स जिसके साथ हमने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने MOUs साइन किए हैं और उन MOUs को बेसिकली वहाँ से टीम आती है और उसको असेस करती है और सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोसेसेस हैं उनको देखती है।
4: ओके, सो रोसब, इसका हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो लेट्स सपोज इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ एजुकेशन वहाँ से लेते हैं जहाँ वॉशिंगटन अकॉर्ड और PEC एक्रेडिटेड प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में हमारा तीनों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, ऑल थ्री प्रोग्राम्स आर एक्चुअली एक्रेडिटेड बाई PEC वॉशिंगटन अकॉर्ड के ऊपर, उनको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा उन स्टूडेंट्स के मुकाबले में जो PEC से रिकॉग्नाइज नहीं है या वॉशिंगटन अकॉर्ड से रिकॉग्नाइज नहीं है? इसके ऊपर UCP के अंदर स्टूडेंट्स को आने का क्या मेजर बेनिफिट होगा आपके ख्याल में?
5: देखिए, मैं दुनिया की अगर बात करूँ ना तो हर, अगर आप यूनिवर्सिटी की किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी कोर्स उठा के देखें तो उसके अंदर ये बताते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू अचीव दिस। वो ऑब्जेक्टिव्स बता देते हैं कि कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और स्टूडेंट की आउटकम्स क्या हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस सिस्टम को अडॉप्ट इंजीनियरिंग काउंसिल ने थोड़ा सा लेट किया है, 2014 के अंदर किया है, बट ओवरऑल दुनिया के अंदर इसको जो है ना सिस्टम को अडॉप्ट बहुत पहले से कर दिया हुआ था। तो इस सिस्टम को अडॉप्ट करने का फ़ायदा स्टूडेंट्स को ये है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दे कैन कम्पीट विद एनी other student and they do not have to get re-accredited from any other organization. Let's say if they move to US or Australia ne to even pichle dino ke andar ye kaam bhi kiya tha ke kyunki we were accredited with the वॉशिंगटन अकॉर्ड, तो हम उस अकॉर्ड की वजह से उनको वीज़ाज दे रहे थे जिसके अंदर 476 कैटेगरी थी, जो जहाँ यहाँ से इंजीनियर डायरेक्ट अप्लाई करते थे और वहाँ पे डायरेक्टली जॉब्स के लिए एलिजिबल थे। अब क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी सी सैचुरेशन हुई है तो उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा सा डिले कर दिया उसको, यानी कि ऑब्वियसली बहुत सारी जो कोविड के बाद स्टूडेंट्स वहाँ पे मूव किए हैं तो इस वजह से उन्होंने थोड़ी सी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, बट ऑब्वियसली इस एक्रेडिशन के बाद वो हेल्प आउट करती है स्टूडेंट्स को कि उनको बाहर के एग्जाम्स नहीं देने पड़ते और डायरेक्टली वो जॉब मार्केट के लिए सूटेबल हो जाते हैं।
4: कीप लिसनिंग, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक एट FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: ऑब्वियसली उसका कोई विजन है, उसने जितने स्टूडेंट्स या जितनी फैकल्टीज को भी यहाँ पे अकोमोडेट करना है, जितने को भी टीच करना है स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने एक विजन बनाना है। फिर उसका एक मिशन भी होता है यूनिवर्सिटी का। मिशन किस चीज़ का है? वो बेसिकली डिपार्टमेंट्स का डिफरेंट, जैसे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट का अपना मिशन है, इसी तरह अगर मैं FOST की बात करता हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका अपना मिशन है। सारी यानी कि अगर मैं UCP के हर डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो उन्होंने अपना एक मिशन बनाया हुआ है कि हम जो स्टूडेंट्स को टीच करेंगे, दे विल बी एबल टू बी अ गुड इंजीनियर एज वेल एज साइंटिफिकली साउंड, एंड दे हैव इनोवेटिव आइडियाज एट द एंड ऑफ दैट डिग्री। तो अब अगर मैं टॉप टू बॉटम बात करूं, तो आप विजन अपना इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर अपना मिशन इंट्रोड्यूस करते हैं, मिशन डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद जो है आप ये अपने डिपार्टमेंट, जो ऑब्वियसली फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स ने अलग-अलग अपने ऑब्जेक्टिव्स बताने कि मैं ये इस किस्म का इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, मैं सिविल इंजीनियर या फॉर दैट सेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ। तो जब ये चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं, आप साउंड होते हैं, आपको पता होता है कि जी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपकी डिग्री के, जो आप डिग्री ऑफर कर रहे हैं, तब उसके बाद आप बेसिकली ये जो वॉशिंगटन अकॉर्ड हम फॉलो कर रहे हैं, उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो लर्निंग आउटकम्स हम एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर होने चाहिए, वो इंट्रोड्यूस करते हैं, वो बताते हैं कि उनके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। अगर मैं जनरली जेनेरिकली बात करूं, तो उन एट्रीब्यूट्स के अंदर इंजीनियरिंग नॉलेज फर्स्ट एट्रीब्यूट, देन आफ्टर दैट हम ये कहेंगे जी प्रॉब्लम एनालिसिस आना चाहिए, उनको कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी आनी चाहिए। पहले नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली उसके बाद आपके पास प्रॉब्लम एनालिसिस होगा। देन आफ्टर दैट they should be able to design something and develop solutions, because obviously there are like problems that are occurring in our system, or un system ke andar jaise abhi agar main baat karun to hamare paas bahut sare aise problems hain jinko address karna baki hai on Pakistan level as well as internationally, bahut sari aisi problems hain jinko address nahi kiya hua, to ab development aani chahiye unko as engineers, they should be innovators and they should be able to investigate, which is next attribute, के उनको इन्वेस्टिगेट करना आना चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उनको मॉडर्न टूल्स यूज करने आने चाहिए, which is the next one। अगर मॉडर्न टूल्स की बात करूँ, तो अब अगर मैं एक इंजीनियर बना रहा हूँ, तो इंजीनियर मस्ट बी साउंड इन अप्लाइंग प्रॉब्लम्स on a simulation, like they should be able to apply simulations, they should be able to have sound knowledge of all the things, all the applications that are available.
1: सर चले मॉडर्न टूल्स की अगर बात करें, आपने बताई है तो हम UCP के अंदर जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में, तो क्या ये हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अवेलेबल होती हैं मॉडर्न टूल्स के लिहाज से? ठीक है, इस तरह के कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ से बेनिफिट कर सकते हैं, जिनसे अपने स्टडीज के अंदर और अपने आप को एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लेवल पे लेके जाने के लिए?
0: देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास टूल्स तो हमारे पास सारे हैं, जो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास टूल्स आ रहे हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर्स की, क्योंकि ऑब्वियसली मॉडर्न टूल्स के अंदर सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, और अगर कोई नई ऐसी इनोवेटिव मशीनरी है जो ज़रूरी है, तो हमारा डिपार्टमेंट तो उसको फौरन एक्वायर करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं, तो हमने 3D प्रिंटर्स एक्वायर किए हैं, और वो मॉडर्न है बेसिकली, स्टूडेंट्स ने कभी सुना भी नहीं होता आजकल, अभी इतने वो आम नहीं हुए, दे आर नॉट दैट ईजी टू गेट as well, because obviously government ki thodi si restrictions hain, but as an educational institute we are able to get those things, aur unko phir hands on practice uske upar karwate hain. Phir jaise ki softwares bahut sare hain jiske andar agar main softwares ki baat karu, on mechanical engineering SolidWorks ke upar hum kaam karwa rahe hain, hum inko jo hai programming languages bahut sari apply karwa rahe hain, python ho gayi, और जो कि मशीन लर्निंग के अंदर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो हम उसको भी यूज़ कर रहे हैं। तो यूसीपी एट इट्स लेवल अगर हर डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे हर किस्म के मॉडर्न टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो

0: मेरे ख्याल में ये जरूरी भी है, क्योंकि ऑब्वियसली जो बच्चा आ रहा है जिस सिस्टम से आ रहा है उसको आजकल ही इज़ वेल इन्फॉर्म्ड कि क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरफ दुनिया जा रही है। और अभी अगर मैं बात करूं वैसे अपनी वो मोबाइल की स्क्रीन से सब कुछ देख सकता है, ही हैज़ सो मच नॉलेज के मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इन द नियर फ्यूचर अगर हम इन मॉडर्न टूल्स को अप्लाई ना करते जाएं, साथ साथ इनोवेट ना करते जाएं, तो मे बी इट्स पॉसिबल कि स्टूडेंट्स आपको आके बता रहे हों कि सर ये जो है ये चीज़ तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर देखी हुई है, या मैंने इसकी वीडियो देखी थी, या कुछ भी अप्लाई किया है। तो इट इज़ पॉसिबल कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ना कर सकें, वो गाइड कर रहे हो अपने टीचर्स को।
1: तो इसका मतलब है यूएसबी इज वेल इक्विप्ड विद दोज मॉडर्न टूल्स, और ताकि हमारे स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सकें, उनसे अपना वो स्किल का लेवल बढ़ा सकें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बराबर आने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: Right, sir, please carry on explaining the attributes.
0: अगर हाँ या ये तो पांच एट्रीब्यूट्स की मैंने बात की थी, फिर इंजीनियरिंग एंड सोसाइटी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सोसाइटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यूनिवर्सिटी की लेवल के ऊपर बात करूँ तो स्टूडेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल, हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यहाँ पे निकाल रहे हैं सोसाइटी के अंदर, ही शुड बी वेल वर्स्ड विद द एथिक्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है जिसके अंदर एथिक्स के अंदर उसको पता होना चाहिए कि उसके क्या राइट्स हैं और दूसरों की रिस्पेक्ट क्या है। दूसरा इंसान अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली ही शुड हैव दैट नॉलेज एज वेल कि उसको मैंने किस तरह ट्रीट करना है, उसने यहाँ के एथिक्स लाइक पाकिस्तान के एथिक्स को फॉरगो नहीं करना, उसको देखना है, उसको नॉलेज होनी चाहिए, ही मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विच इज़ द नेक्स्ट एट्रीब्यूट, जिसके अंदर उसकी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ कि हम अगर लेट से एक स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास, तो वो इतने ज़्यादा उसने कभी कम्युनिकेट नहीं किया होता डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, कम्युनिकेशन के बाद ये है कि ही इज़ नॉट इक्विप्ड विद प्रेजेंटेशंस। कुछ होते हैं स्टूडेंट्स जो डिबेटिंग सोसाइटीज़ के अंदर जाते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं, बट अगर मैं हर इंजीनियर की बात करूं तो ही मस्ट बी एबल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। तो उसको भी एड्रेस कर रहा है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जिसके अंदर उसकी कम्युनिकेशन लेवल को, उसकी राइटिंग लेवल्स को उस जगह पे लेके आ रहा है जो कि एक इंजीनियर से रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करूं तो इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। बेसिकली इंडिविजुअल जो है स्टूडेंट्स इंडिविजुअली पढ़ के आ रहे होते हैं, टीम्स के अंदर उन्होंने कभी काम नहीं किया होता, तो ये एट्रीब्यूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें पता हो कि मैं अगर आ रहा हूँ किसी भी बैकग्राउंड से, तो मुझे कल को किसी जॉब के लिए जाना है इंडस्ट्री के अंदर, तो इंडस्ट्री के अंदर तो डिफरेंट पीपल आर डूइंग थिंग्स, वो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम वहाँ पे कर रहे होंगे उसके साथ मिलके ही उसने काम करना, तो ही शुड हैव दिस नॉलेज कि मैंने टीम के अंदर किस तरह काम करना है, अगर मैंने टीम को लीड करना तो उसको किस तरह लीड करना है। तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी है, जिसके अंदर हम मैनेजमेंट सिखाते हैं बच्चे को, मैनेजेरियल स्किल्स उसके अंदर डिवेलप करते हैं कि ही मस्ट बी एबल टू मैनेज things, he must be able to manage stuff like humans ko manage kis tarah karna hai.
1: Okay listeners, keep listening, we'll be right back after a short musical break at FM 92.6 UCP ki duniya.

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक लिसनर्स. ओके डॉक्टर, आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर सकते हैं कि ओबीई डेवलपमेंट के अंदर क्या लेवल्स इन्वॉल्व हैं, किस तरह स्टूडेंट्स वो स्किल गेन करते हैं और किस तरह हम जो टीचर्स हैं उनको पढ़ाने का क्राइटेरिया सेट करते हैं?
4: बेसिकली अभी हम लेवल्स की बात कर रहे थे, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे पास, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो हमारे पास कोर्स लर्निंग आउटकम्स होते हैं. हर कोर्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि यार इस कोर्स के बाद स्टूडेंट जो है ही मस्ट बी एबल टू डू अ फ्यू थिंग्स इंडिपेंडेंटली और उसके ये स्किल्स डेवलप हो चुके हों इस कोर्स को पढ़ने के बाद. तो वो कोर्स लर्निंग आउटकम्स होते हैं और उस कोर्स लर्निंग आउटकम्स को आगे फर्दर हम मैप करते हैं किसके साथ, जो हमने मैंने अभी आपको प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स बताए हैं. तो अब अगर ओवरऑल बात करूं मैं ओबी सिस्टम की, तो ये अगर ऊपर से स्टार्ट करूं तो मेरे पास विजन है, फिर मिशन है, विजन ऑफ द यूनिवर्सिटी, मिशन ऑफ द फैकल्टी, और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट के प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स जो है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है इनकलकेट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर वो है. फिर उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं, जो कि मैंने अभी आपको 12 प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स बताए हैं. फिर उसके बाद आ जाते हैं कोर्स लर्निंग आउटकम्स. तो अब हमारे पास अगर इंजीनियरिंग की बात करूं तो हमारे पास 40 डिफरेंट कोर्सेज हैं और उन कोर्सेज को हम ओवर टाइम पढ़ाते हैं और उसके अंदर एटलीस्ट 3 हमारे पास कोर्स लर्निंग आउटकम्स पर कोर्स हों तो 120 कोर्स लर्निंग आउटकम्स, विच इज़ अ वे बिग थिंग. और एटलीस्ट हमारे पास 3 दफ़ा असेस भी उनको हमने करना है कोर्स के अंदर. और उनकी असेसमेंट किस तरह होगी, वो क्विजेस के थ्रू हो सकती है, वो टेस्ट्स के थ्रू, वो मिड टर्म एग्ज़ाम के अंदर हो सकती है, वो फाइनल एग्ज़ाम के अंदर हो सकती है, प्रेजेंटेशंस के थ्रू हो सकती है, फिर लैब असाइनमेंट्स हमारे पास, क्योंकि ऑब्वियसली इंजीनियर जो है वो थ्योरेटिकल इंजीनियर तो हम बनाते नहीं हैं, तो लैब्स के अंदर जो वो काम कर रहे होते हैं उसकी असेसमेंट भी हो रही होती है. तो कोर्स लर्निंग आउटकम्स के अंदर फिर हमने कोर्स के साथ तो हमने उनको मैप किया होता है, उसकी थ्योरी, उसकी एनालिटिकल स्किल्स हम कोर्स के अंदर डेवलप कर रहे होते हैं, बट उसके जो स्किल्स हैं वो लैब के अंदर वो डेवलप करता है. तो लैब के अलहदा से फिर हम डिफाइन करते हैं. अब अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली कोर्स के अंदर ये असेसमेंट्स की हैं चीज़ें, और जो लैब की असेसमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर होती है. उसके अंदर हम रूब्रिक्स बनाते हैं, रूब्रिक्स के अंदर डिफाइन करते हैं कि यार अगर स्टूडेंट ने इस तरह का रिस्पांस दिया या इस तरह का स्किल एक मशीन को ऑन करने के, उसको वर्किंग पोजीशन के अंदर लाने के, और उसके अंदर जो एनालिसिस हमने डेवलप करना है, तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसके डिफरेंट वर्क एथिक्स हो सकते हैं. लेट्स से अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूँ तो हम डिफरेंट फ्लूइड्स के साथ डील कर रहे हैं. अब एक स्टूडेंट अगर आता है और वो फ्लूइड किसी भी लिक्विड को स्पिल कर देता है ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, तो उसके स्किल्स को हमने असेस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. और अगर हमने उस चीज़ को असेस नहीं किया प्रॉपरली कि ही डिड ही मैनेज दोज थिंग्स. अगर मैं दूसरी तरफ फ्लूइड से हट के बात करूं तो हमारे पास RAC की लैब है, जिसके रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन कहते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन्वॉल्व्ड है, और वहां पे कहीं पे फायर हैजर्ड हो जाता है या कोई प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, तो स्टूडेंट्स मस्ट हैव नॉलेज कि मैंने अब इसके साथ किस तरह डील करना है. तो अगर वो नॉलेज नहीं है स्टूडेंट के पास और उस लैब को उसने पास कर लिया है विथ फ्लाइंग कलर्स, तो इट इज़ यूजलेस, क्योंकि कल को उसने इंडस्ट्री के अंदर काम करना है. इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ हो रहे होंगे और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हाउ ही इज़ एबल टू डील विद दोज प्रॉब्लम्स. और अगर हमने वो चीज़ नहीं सिखाई, उसको इन चीज़ों का नहीं पता, तो उसको हमने किस तरह असेस किया था और उसको एक ए ग्रेड दिया था इन लैब. क्योंकि यूजली इससे पहले जब ये सिस्टम नहीं था, तो इससे पहले जो लैब्स को पास करना बहुत आसान था. आपने एक लैब की कॉपी बनाई, उसके अंदर उसका एक छोटा सा वाइवा हो गया और उसको आपने असेस करके बता दिया. अब जो है हम उस लैब के अंदर जो असेसमेंट कर रहे हैं उसके अंदर 3 डोमेन्स के अंदर हम उनको स्टूडेंट्स को असेस करते हैं. एक उसकी इफेक्टिव डोमेन है, एक उसकी साइकोमोटर डोमेन है, और एक उसकी कॉग्निटिव लेवल के ऊपर डोमेन है. कॉग्निटिव ये जो टर्म्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल्स हैं, जो कि एक एजुकेशन से रिलेटेड पर्सन गुजरा है तो उसके अंदर बेसिकली ही हैज़ डिफाइंड डिफरेंट लेवल्स के जो हमारे पास स्किल्स हैं स्टूडेंट्स के अंदर वो कॉग्निटिव लेवल के हैं, यानी कि अगर वो पढ़ के अंडरस्टैंड करके उसको अप्लाई कर देता है किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देता है तो वो कॉग्निटिव स्किल्स हैं उसके। दूसरी तरफ बात करूँ तो साइकोमोटो स्किल्स हैं स्टूडेंट्स के, उन साइकोमोटो स्किल्स के अंदर अगर फर्दर इसके अंदर जाऊँ तो साइकोमोटो स्किल्स बेसिकली क्या होते हैं कि उसने मशीन को किस तरह ऑन किया, किस तरह उसको ऑपरेट किया, फिर आफ्टर परफॉर्मिंग अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंड कि उसने उसी तरह मशीन को छोड़ दिया या उसको क्लीन किया या उसके अंदर अगर कोई आउटलेट था इलेक्ट्रिकल आउटलेट था उसको स्विच ऑफ किया, उसने ऑपरेट एज सच क्या किया, उसके स्किल्स क्या थे, उसको एक्सपेरिमेंटल रिग को बनाने में उसके क्या एफिशिएंसी उसने उस अंदर अपनी पुट की, वो सारी चीज़ें उसके अंदर साइकोमोटो के अंदर उसके जो उसकी नॉलेज थी उसने करेक्टली उसको अप्लाई किया है कि नहीं किया वो हम उसके अंदर चेक कर रहे होते हैं। अदर थिंग इज इफेक्टिव डोमेन। अगर मैं इफेक्टिव डोमेन की बात करूं तो वो लेट से अब एक स्टूडेंट काम कर रहा है डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ और वो स्टूडेंट्स के साथ किस तरह बिहेव करता है, उसकी मूवमेंट इन द लैब किस तरह की है, उसने किस तरह रिस्पॉन्ड किया डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, तो वो हम असेस उसके अंदर इफेक्टिव डोमेन के अंदर कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स हैं जो जिसको करने के बाद हम कहते हैं कि एक जो स्टूडेंट हमने यहाँ पे किया है जिसको हमने लेके आए हैं यहाँ पे स्टूडेंट को इंजीनियर एक डिग्री दे रहे हैं, उसकी एक पहचान बना रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर ये इंजीनियर के अंदर नहीं होती, ये सारे एट्रीब्यूट्स नहीं होते तो इट इज़ इन माय ओपिनियन यूजलेस। मैं अभी इंजीनियरिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ तो मैं ये यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि यूसीपी के अंदर एफर्ट्स अभी हो रही हैं कि यूनिवर्सिटी वाइड इस चीज़ को अप्लाई किया जाए, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर इंजीनियरिंग नॉलेज है तो ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट के अंदर हर फैकल्टी के अंदर उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, उनको डिफाइन करना चाहिए, हर कोर्स के ऊपर उनकी कोई ना कोई आउटकम डिफाइन होनी चाहिए। इस सिलसिले में जो है मैनेजमेंट बहुत हेल्पफुल है। ऑब्वियसली हम एज एन इंजीनियर यहाँ से दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी एजुकेट करते हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग्स हो रही हैं और ऑब्वियसली हमें अगर 2014 से हमने अप्लाई करना स्टार्ट किया था तो हम इस वक्त भी लर्निंग प्रोसेस के अंदर हैं और ऑब्वियसली 11 इयर्स आफ्टर अप्लाइंग दिस एक्रेडिटेशन सिस्टम तो उसके अंदर भी हमें लर्निंग प्रोसेस के अंदर हैं, तो ऑब्वियसली ये एक दिन में तो नहीं होगा स्टार्ट, तो हम जो है इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं ऑन डिफरेंट लेवल्स। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, हमें भी तकरीबन 2 साल जो है वो रिग्रस ट्रेनिंग हुई थी, तो अभी हम मैनेजमेंट के साथ मिल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एज अ होल अगर एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद वेरी गुड रैंकिंग इन ओवरऑल इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन पाकिस्तान, तो उसको अचीव करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इस सिस्टम के ऊपर जाएं।
3: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन बताया ऑन OBE वाशिंगटन एकॉर्ड और जो एफर्ट्स UCP और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग UCP के अंदर कर रहा है अपने स्टूडेंट्स का लेवल इंटरनेशनल लेवल लेके जाने के लिए, ताकि वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी काफ़ी ज़्यादा अपने फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हो सके। ओके लिसनर्स थैंक यू सो मच डॉक्टर गुलरेस, आपने बहुत अच्छा गाइड किया हमारे लिसनर्स को आउटकम बेस्ड एजुकेशन एंड वाशिंगटन अकॉर्ड पे और जो एफर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब स्पेशली फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग कर रही है ताकि आपके स्टूडेंट्स का लेवल जो है वो हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं, उनकी स्किल्स का भी और उनको अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिल सके इंटरनेशनली भी और नेशनली भी।
4: बिल्कुल,
3: एंड थैंक यू सो मच लिसनर्स एज वेल कि आपने अपना टाइम स्पेंड किया हमारे साथ, एंड विल बी बैक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक विद अ न्यू गेस्ट। दिस इज मोहम्मद जैनुल आबिदीन फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड आवर गेस्ट टुडे वर डॉक्टर गुलरेज अहमद आल्सो फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एंड थैंक यू सो मच, विल सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: वेलकम बैक टू द शो, नई दुनिया में खुश आमदीद। जैसे कि हम ब्रेक से पहले एग्रीकल्चर पर बात कर रहे थे और उसको इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है और किस तरह से वो कंट्रीब्यूट करता है इस पर बात कर रहे थे। जी आजम, आप बताइएगा।
2: जी नबील भाई, जिस तरह ब्रेक से पहले आपने बात की थी एग्रीकल्चर किस तरीके से इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करता है, उसमें आपने 2 से 3 पहलुओं पर बात की थी। एक एम्प्लॉयमेंट की बात हुई थी और इसके अलावा आपने बात की थी एक्सपोर्ट की। मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि इंडस्ट्रीज को बड़ा फर्क पड़ता है। हमारी जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, ये एक बहुत बड़ा सरमाया है जो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करती है। डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज होती है जो कि गुड्स को, जो प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज करके डिफरेंट मुल्क में एक्सपोर्ट करती है। उसके लिए हमारी एग्रीकल्चर में जो रॉ मटेरियल होता है वो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और जब वहां पे जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में यूज होता है तो ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन की हम बात करते हैं, कॉटन इट्स अ मेन प्रोडक्ट, एक मेन रॉ मटेरियल है कॉटन जो कि टेक्सटाइल में इस्तेमाल होता है। तो ये ओवरऑल इंडस्ट्री को बहुत फर्क पड़ता है इससे।
1: जी आजम, इंडस्ट्री में जब हम रॉ मटेरियल हमारा जब अपना होता है तो हमें उसका बहुत फायदा होता है। प्राइस हमारे यहाँ एक बड़ा इशू है कि प्राइस हाइक आती है। अगर हमारा रॉ मटेरियल अपना हो तो प्राइस कंट्रोल करने में बहुत आसानी होती है। अक्सर आपने सुना होगा कि जी गाड़ियों की कीमत बढ़ गई या किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ गई, उसकी बहुत बड़ी वजह यह होती है कि जो हम बाहर से चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे होते हैं वो महंगी हो जाती हैं, उन पर टैक्सेस मजीद लग जाते हैं, वो आलमी मंडी पर उस तरह से दस्तयाब नहीं होती, उनकी शॉर्ट स्टॉक की वजह से बहुत से मसाइल होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा है।
2: जी बिल्कुल नबील भैया, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा, हम बात करते हैं इसके इश्यूज की कि एक फार्मर को और एग्रीकल्चर की अगर हम ओवरऑल ही बात करते हैं तो इनको इश्यूज क्या फेस करने आ रहे हैं कि पिछले साल जिस तरह हमने देखा कि जो हमारी एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री है वो ग्रोथ करने के बजाय माइनस में गई है। लास्ट टाइम जो ग्रोथ रेट था और जो हमारी गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा था एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए और इनकी जो ग्रोथ रेट थी वो 3.8% का टारगेट रखा था इन्होंने, मगर अब इस साल जो हमने एग्रीकल्चर का जब पूरी ग्रोथ देखी तो हम -0.8 में जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है, फार्मर्स को क्या इश्यूज आते हैं जो वो फेस करते हैं, डिफरेंट इश्यूज जो कि फार्मिंग से रिलेटेड हैं, सीड से रिलेटेड हैं और मशीनरी से रिलेटेड हैं। तो ये कौन कौन से इश्यूज हैं जो फेस करता है फार्मर और एग्रीकल्चर ओवरऑल इंडस्ट्री?
1: बिल्कुल आजम, पिछली 1-2 दहाइयों में हमारी जो ज़राअत की प्रोडक्शन है जिसको हम प्रोडक्शन यील्ड कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक डिक्लाइन देखने को आया है। हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे होते थे एग्रीकल्चर पर, अब नहीं कर रहे या इस कदर हमें उससे फ़ायदा नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम बैकवर्ड हैं। सबसे पहले सिस्टम को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप किसान को क्या दे रहे हैं। अगर आप एक मुल्क का कहते हैं कि अगर किसान खुशहाल है तो मुल्क खुशहाल है, क्यों कहते हैं? किसान कोई भी काम हो, मैं आपको इसकी एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार्बर शॉप है, एक नाई की दुकान है जो बाल काटता है, वो तनख्वाह पे 2 मुलाज़मीन रखता है जो उसके लिए बाल काटते हैं और उसका एक सिलसिला चल रहा है। तो हो सकता है कि वो मुलाज़मीन उतना एफिशिएंटली काम ना करें क्योंकि वो मुलाज़मत पे हैं, उनको एक माह बाद तनख्वाह मिल जाएगी और वो अपने घरों को जो है वो चला रहे होंगे। लेकिन अगर इसकी जगह आप ऐसे करें कि हर कस्टमर से मिलने वाले जो रकम है उसमें से उनका एक हिस्सा रख दें और उनको कमीशन दे दें तो वो उस बिजनेस का बेनिफिशरी बन जाएंगे। तो वो जो एक इफेक्टिव काम कर रहे होंगे ना, जितना इफेक्टिवली वो उसको दिल लगा के काम कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि उनकी जो तरक्की है वो उससे मशरूत होगी, डायरेक्टली जुड़ी होगी, तो वो उस काम को अपना काम करके समझेंगे। सेम गोज फॉर द एग्रीकल्चर सिस्टम हमारा ये जो यहाँ का है, किसान को फायदा ही नहीं हो रहा तो वो कैसे काम करे? प्रोडक्शन जो भी हम यील्ड ले रहे होते हैं उससे किसान को कोई फ़ायदा नहीं होता। जब वो मंडियों में जाती हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ बिक रही होती हैं, जब वो शहरों में आती है फिर ज़्यादा मार्जिन के साथ बिक रही होती है। लेकिन किसान जिसने 6-8 महीने लगा के पूरा सीज़न लगा कर उस पर मेहनत की होती है उसको कुछ मिलता ही नहीं है। जब किसान को कुछ मिल ही नहीं रहा होगा, जब किसान को कोई फ़ायदा ही नहीं दे रहा होगा, तो फिर हम किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसमें दिल लगा के काम करें या हमारी जो है वो ज़रई ज़रात जो है वो तरक्की करें? इसमें बहुत से और भी पहलू हैं, हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, हमने ज़रात में एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व नहीं किया,

0: ने अपने पानी के वसाइल नहीं बढ़ाए, हमने रिसर्च नहीं की। आप अगर देखें तो कराची, लाहौर गुज़िश्ता 4-5 सालों में मौसम बहुत ज़्यादा तब्दील हुआ है, जिसकी वजह से हमारी ज़राअत की जो प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर, जो किसान है, उनको उनकी टाइमिंग्स में फ़र्क आया है। लेट सपोज एक फसल अक्टूबर में कटनी चाहिए थी, अब उसके टाइम में फ़र्क आया है क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, मौसमों के टाइमिंग्स बदल रहे हैं, गर्मी जल्दी आ जाती है, सर्दी जल्दी आ जाती है, सर्दी प्रोलोंग कर रही है। तो ये वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर वर्किंग होनी चाहिए, लिटरेसी रेट जो है होना चाहिए, फार्मर्स को पढ़ाई पे उनके फोकस होना चाहिए, एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए। जब वो उन तमाम चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे तभी हम एक प्रोडक्शन में अपनी बढ़ा सकेंगे और हमारी जो है वो ज़रात तरक्की याफ्ता हो सकती है।
1: बिल्कुल नवील भाई, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता जानूँ कि जिस तरह जो किसान है अगर हम उसको एजुकेट भी साथ साथ करें, क्योंकि जिस तरह बहुत से आपने बात की कि पाकिस्तान का 70% जो हिस्सा है वो रूरल एरियाज है, वहाँ पे ऑब्वियसली बात है वो लोग आके स्मॉल स्केल, जिसको हम बात करते हैं स्मॉल स्केल फार्मर जो अपना वहाँ पे काम कर रहा होता है, उसको एजुकेट करने के लिए भी हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए कि उसको पता चले कि सीड्स और मशीनरी कौन कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए और उसी हिसाब से हमें प्राइजेस में उतना ही उनके लिए डिक्लाइन भी रखना चाहिए कि अगर तो कोई छोटा तबके का फार्मर है जो कि अपनी एक छोटी सी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहा है उसके लिए भी आसानी हो और वो भी मुल्क में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हम इस पर डिफरेंट बात करेंगे टेक्नोलॉजी पर, वो भी हम जानेंगे कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है और वो किस तरीके से काम कर रही है, बट एक छोटी सी ब्रेक के बाद।

0: fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP ki duniya.
1: वेलकम बैक टू नई दुनिया. जैसे कि हम ब्रेक से पहले एग्रीकल्चर पर बात कर रहे थे, हमने इकॉनमी पर बात की, हमने बात की कि क्या मसाइल हैं, इन मसाइल को हल भी तो किया जा सकता है. हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे आ गए हैं, हम टेक्नोलॉजी को हर पहलू में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में क्यों नहीं? क्या ख्याल है आपका, हम एग्रीकल्चर में किस तरह टेक्नोलॉजी को?
2: जी बिल्कुल नबील भाई, मैं जिस तरह के मैं बात करता हूँ कि जहाँ पे मसला होता है वहाँ पे ही टेक्नोलॉजीज होती हैं, वहाँ पे ही स्टार्टअप्स आते हैं. तो हम इस सेक्टर में भी बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात की जाए तो टेक्नोलॉजी आज फार्मर के लिए जो इस टाइम पे ड्रिप इरीगेशन का सिस्टम जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, जिस तरह के वाटर का इशू बहुत कॉमन इशू है, ठीक है ना, जो जितना भी फार्मर है वो बात करता है, जो उसका मेन जो उसके रीज़न है उसकी काश्तकारी की ग्रोथ में कम होने की, क्योंकि चावल की फसल, कॉटन की फसल, शुगर कैन की फसल, ये बहुत ज़्यादा पानी कंजम्पशन करती हैं. तो उसका जो फार्मर का एक बेसिक जो इशू आता है उसको फेस करना पड़ता है, उसको वाटर का इशू फेस करना पड़ता है. जो डैम्स के जो पास जिनके फार्म्स होते हैं तो वहाँ से वाटर की बड़ी अच्छी सप्लाई उनको मिल जाती है, बट वो लोग जो कि एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर पानी की सप्लाई प्रॉपरली उनको नहीं मिल पाती, तो वहाँ पर जो ट्यूबवेल्स होते हैं वो उसके ज़रिए से वहाँ लेते हैं, बट वो भी क्या होता है कि एक्स्ट्रा पानी इस्तेमाल हो जाता है. तो ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा सिस्टम है टेक्नोलॉजी के अंदर जो कि हर फसल के बराबर, हर फसल के साथ वो चीज़ को इंस्टॉल कर दी जाती है, और जितनी फसल को, फॉर एग्जांपल अगर एक चावल की फसल है उसको कुछ टन और कुछ लीटर पानी चाहिए होता है तो वो उतना ही पानी उसको फराहम करता है, रेदर देन के वो पानी को वेस्ट करे. तो पानी की वेस्टेज का मसला यहाँ से ख़त्म हो जाता है.
1: बिल्कुल आजम, पानी एक बहुत बड़ा मसला है, और अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो तो हम पानी के मसले को इग्नोर नहीं कर सकते, ये इनका चोली दामन का साथ है. पानी का मसले पे अगर हम बात करें तो सामीन को एक फिगर देने के लिए, एक इस बात का रियलाइजेशन के लिए कि पानी किस कदर पानी इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में, तो मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारा डोमेस्टिक यूज़ है, जो हम घर में पानी को इस्तेमाल करते हैं, अदादो शुमार के मुताबिक एक इंसान की औसतन जो खुराक पैदा होती है और उसमें उस खुराक को खेतों में पैदा करने के लिए जो पानी लगता है उसकी तादाद डोमेस्टिक यूज से 50 से 70 गुना ज़्यादा है. मिसाल के तौर पे कि अगर एक गैलन पानी एक शख्स अपने घर की ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए जो खुराक पैदा हो रही है तो वो 50 से 70 गैलन पानी उसकी खुराक की तैयारी के अंदर इस्तेमाल हो रहा है. तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है पाकिस्तान में, ये एक बहुत बड़ा मसला है. ड्रिप इरिगेशन एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम पानी बचा सकते हैं, और सिर्फ पानी डीप डाउन सिर्फ रूट्स को मिल रहा होता है जहाँ पर पानी की ज़रूरत होती है. इसके अलावा ऐसी अद्वियात, ऐसी खादें आ चुकी हैं जो कि अगर हम फसलों पर लगा दें तो वो मॉइस्चर को इवेपोरेट नहीं होने देती, वो बुखारात की शक्ल इख्तियार नहीं करता, और पानी के मज़ीद भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं. तो अगर हम टेक्नोलॉजी का इफ़ेक्टिव यूज़ करें तो हम अपनी ज़रात को, जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती हैं, इसको हम वापस उस पैमाने पर लेके जा सकते हैं. टेक्नोलॉजी का इसके अलावा क्या हो सकता है इस्तेमाल? मेरे ख्याल से बाहर के ममालिक में ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं, रिमोट ड्रोन्स के ज़रिए एक सर्विलेंस देखी जाती है. मिसाल के तौर पे एक ग्रीन शीट आपने देखी होगी खेतों में अक्सर लगी होती है, जो कि बड़ी कॉमन एक मेथड है कि ग्रीन शीट लगा दी जाती है. अक्सर ऐसे होता है कि वो एकड़ों की ज़मीन पर जब ग्रीन शीट लगाई जाती है तो मौसम की वजह से या बहुत सी वजूहात की वजह से वो फट जाती है, तो उन्हें पूरा पूरा कई कई एकड़ की ज़मीन को देखना पड़ता है और उसको एक सर्विलेंस करना बहुत मुश्किल है. अब आप देखें कि अगर एक ड्रोन उड़ाया जाए और उसको 5 या 7 मिनट लगेंगे एक एरियल व्यू कैप्चर करने में, और आपको घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, और आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से फसल ख़राब है, कहाँ पर रिपेयरिंग की ज़रूरत है. तो ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है, आपका क्या ख्याल है?
2: जी बिल्कुल नबील भाई, जो मशीनरी या जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल ही मेरे ख्याल से उसका एक जो मेन पर्पस भी यही होता है कि आपके टाइम को वो किस तरीके से सेव करती है. इस तरह आपने ड्रोन की बात की, अब मैं इसमें एक और चीज़ देखूँ कि मशीनरी का बड़ा रोल है. जो हम अपने फार्मर को देखते हैं, अपने किसान को देखते हैं, वो जो रूरल एरियाज़ में जो अपने उसके स्मॉल स्केल पर, और इवन तो चाहे वो एक बड़े स्केल पर ही वो फार्मिंग क्यों ना कर रहा हो, वहाँ पर जो वो मशीनरी का جو استعمال کر رہا ہوتا ہے فصل کو کاٹنے کے لیے، جو ٹریکٹرز کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک تو بہت زیادہ پرانی ٹیکنالوجی ہے، اور ٹریکٹر یا تو موسٹلی خراب ہوتے ہیں، اور جب وہ چلتے ہیں تو وہ دھواں بہت ان میں سے نکلتا ہے، جو کہ اوبویسلی بات ہے فصلوں کے لیے بھی خراب ہوتا ہے۔ تو ایسی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں پاکستان میں بھی، اور ڈفرینٹ جگہ سے یہ امپورٹ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں ایسی مشینری، جو کہ ہمارے ٹائم کو بھی سیو کرے گی اور فصلوں کے لیے بھی وہ چیز اچھی ہوگی اور بہتر طریقے سے ان سب چیزوں کو کرے گی، اور اسی کی وجہ سے جتنا ہی ٹائم ہمارا بچے گا اتنی ہی فصل کی کاشتکاری میں زیادہ ہمارے پاس ٹائم ہوگا، اور ہم بہتر زیادہ پروڈکشن سے کر سکتے ہیں۔ جس طرح کے آپ نے بات کی ابھی ڈرون کی اور مشینری کی، مجھے بتائیے گا کہ کوئی ایک ایسی اس میں علاوہ چیز جو سیڈس کے حوالے سے، میں نے آج سننے میں آ رہی ہے کہ چائنا سے کچھ سیڈ ایسے منگوائے جا رہے ہیں جو کہ کاشتکاروں کو دیے جائیں گے اور وہ فصل کے لیے بہت بہتر ہے۔
1: بالکل ایسا ہی ہے۔ تھوڑی سی میں پہلے کی بات کر لوں کہ آپ نے بات کی مشینری کی، تو بالکل ایسا ہے کہ بیج بونے کے لیے بھی ڈرونز کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ فصل کاٹنے کے لیے بھی بہت لیٹسٹ مشینری ہے جو بہت جلدی ٹائم مینجمنٹ کے لیے، اور جو ایک ہیومن کی ایفرٹ ہے، ایک مزدوری میں بہت کمی لاتی ہے، اور اس پہ بہت سارا کام ہو سکتا ہے، بہت پوٹینشیل ہے اگر ہم اس کو یوز کریں۔ چائنا کی آپ نے بات کی، چائنا سے بہت ساری ٹیکنالوجی پاکستان اڈاپٹ کر رہا ہے، اور امید کر رہے ہیں ہم کہ آنے والے وقتوں میں چاول اور جتنی بھی ہماری پروڈکشن ہے وہ بہت بہتر ہوگی، ہم ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ اس پر مزید کام کرے گی، اور ہمارے لوگ جو کہ شہر دیہاتوں سے آتے ہیں اور ان کی پیچھے زمینیں ہوتی ہیں اور وہ باہر نکل جاتے ہیں، وہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اس ٹیکنالوجی، اپنی اس پڑھائی کو، اس شعور کو، اس ریسرچ کو واپس جا کے امپلیمنٹ کریں، اور اس میں بھی بہت پوٹینشیل ہے، وہاں سے بھی بہت ساری ترقی ہو سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ Stay tuned.

0: वेलकम बैक टू द शो। आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीबी की दुनिया। मैं हूं आजम तारिक विद माय को-होस्ट नबील नासिर। ब्रेक से पहले हमने बात की एग्रीकल्चर पे और किस तरीके से एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा मेन रोल है हमारे इकोनॉमी में और डिफरेंट चीजों पे और मुल्क की ग्रोथ में। हम बात कर रहे थे, आज आके मुझे ऐसा लगता है बात आ जाती है पढ़ाई पे, इन्फॉर्मेशन पे, और पब्लिक को, ऑडियंस को, लोगों को आप किस तरीके से गाइड करते हो, उनको उन मसलों के बारे में बताते हो। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या काम कर रहा है हमारे आम लोगों को गाइड करने के लिए, और टेक्नोलॉजी, जो लोग टेक्नोलॉजी पे आगे काम करना चाहते हैं, AI ये एक बहुत, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत फैसिनेटेड लव सुना जाता है, और मैंने देखा है कि बहुत से आप हमारे पड़ोसी मुल्क इस पे बहुत से पैसे खर्च करते हैं। जिस तरह के एस्टिमेट रकम बताई जाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर एनुअली खर्च किए जाते हैं AI में, टेक्नोलॉजी में। तो हमारा पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में कहाँ पे फॉल करता है, और हमारे पाकिस्तान किस तरीके से टेक्नोलॉजी पे कितनी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आने वाले वक्तों में इसका क्या स्कोप देखा जाता है टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स के लिए?
1: बिल्कुल ऐसे ही आज़म, हम क्योंकि इकोनॉमी में इतना फंसे हुए हैं, हम कर्ज़ों में इस कदर डूबे हुए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट्स पढ़ाई पर, एग्रीकल्चर पर और इन तमाम चीज़ों पर उस कदर पैसे नहीं लगा पाती, उस कदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती जिस कदर उन्हें करनी चाहिए और जितनी तादाद में करनी चाहिए। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने पड़ोसी ममालिक की बात की, तो इंडिया एक बहुत ज़्यादा AI पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, बहुत सारी उनका एक बजट का बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो कि वो यूनिवर्सिटीज़ पर, पढ़ाई पर, रिसर्च पर दे रहे होते हैं। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक की अगर बात की जाए तो अमेरिका, चाइना अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा AI में दे रहे होते हैं। एग्रीकल्चर और जो लोग यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं वो मोस्टली जॉब्स कर लेते हैं शहरों में आकर, और या बाहर के ममालिक में जॉब्स के लिए चले जाते हैं, वो वापस अपने गाँव और वापस अपनी जगह पर नहीं जाते। तो मेरे ख्याल से इसमें एक यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है, शायद वो पोटेंशियल नहीं देखते जो कि टेक्नोलॉजी की सूरत में या रिसर्च कर वो अपनी ज़मीनों पर लगा कर सकते हैं। इसी तरह एक और बहुत एक अहम एक नई इमर्जिंग फील्ड है AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ज़्यादा इसका रोल है। अगर हमने क्योंकि पिछले में ज़रात की बात की है, तो ज़रात में भी अगर हम देखें तो खेतों में भी सेंसर्स के ज़रिए, सर्विलेंस के ज़रिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी इस कदर यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस पर अपना बजट इस साल दिया इससे कहीं ज़्यादा दे और इस पर काम हो। आपकी क्या राय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह रोल अदा कर सकती है, और इस टाइम यूनिवर्सिटीज़ का क्या आलम है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर इफ़ेक्टिव प्रोफेशनल काम हो रहा है, वो तालीम है जो कि हमें वाकई फील्ड में एक्सेल करने में कामयाब करे या हमें काम दे?
0: जी बिल्कुल, देखिए नबील भाई, बात पता क्या है, अगर हम बात पीछे से स्टार्ट करें और एक ओवरऑल बात करें तो सबसे पहले देखी जाती है हमारी यूथ, या हमारी ये जो यूथ है इनमें, इसमें वो पोटेंशियल है जो कि आने वाले वक्तों में बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स पे और बहुत से ऐसी इनोवेशंस पे काम कर सकते हैं, AI पे काम कर सकते हैं, जो कि मुल्क की ओवरऑल बेहतरी के लिए भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह की आपने बात की कि टेक्नोलॉजी की, अगर आप मशीनरी का जो इस्तेमाल आप करते हैं अपनी फसलों में, अपने रोज़मर्रा के कामों में, इसके अलावा अपने एजुकेशन सेक्टर्स में, और बहुत सी आपकी ज़िंदगी के मेरे ख्याल से हर सेक्टर में आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। जब वो टेक्नोलॉजी आप खुद से मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस नहीं कर रहे होगे तो ऑब्वियसली बात है वो बाहर से मंगवाओगे, जब वो बाहर से मंगवाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा बाहर जाएगा और आपकी इकोनॉमी में इसमें मसला होगा। जब आपकी प्रोडक्शन अपनी होगी तो ऑब्वियसली बात है जब आप बाहर मशीनरी को दे रहे होगे तो आपके एक ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत अफेक्ट आएगा। अच्छा, जब आपने बात की यूनिवर्सिटी वाली, तो यूनिवर्सिटी का मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये वो बच्चे, ये वो एक फैक्ट्रीज हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो वो उन माइंड्स को डेवलप करती है, उस माइंड को क्रिएट करती हैं। मसला यहाँ पर आता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च ओरिएंटेड नहीं होती, हमारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्चेस को प्रमोट नहीं किया जाता, हमारी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चनिंग को प्रमोट नहीं किया जाता। अगर कोई यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा, मेरा ऐसा ख्याल है कि कोई क्लास में बैठा कर कोई क्वेश्चंस पूछ लेता है टीचर से, तो टीचर मोड़ के उसको देख के ऐसे कहता है किसने पूछा ये, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे में फियर और सब चीज़ें डेवलप कर दी जाती हैं। अगर हमारी यूनिवर्सिटी इन सब चीज़ों पे काम करे और AI पे सिखाने की कोशिश करे तो मेरा ख्याल है कि आने वाले फ्यूचर में एक मैसिव चेंज हमें देखने को मिलेगा। जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात हम कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश करने का जो एक मिशन है, वो जो प्रोजेक्ट है, वो गवर्नमेंट ने दे दिया है, जहाँ पे AI और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर काम होगा, जहाँ पर डिफरेंट टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं और डिफरेंट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको एक शेड के नीचे लेके आया जाएगा और सब मिलके एक टेक्नोलॉजी पे और AI पे काम करेंगे। ان کا جو پرپوزل ہے وہ دے دیا ہے. اس میں ہوگا یہ کہ جو بچے ہیں جو کہ ٹیکنالوجی پہ کام کرنا چاہتے ہیں, جو وہ جو پاکستان میں وہ جو مائنڈ ہے, جو یوتھ ہے جو کہ ٹیکنالوجی کا شوق رکھتی ہے اور آنے والے وقتوں کے وہ ایک اسٹارٹ اپس کنگز کہنے کو سمجھنے کے وہ ہوں گے, ان پہ ان کا ایڈمیشنز ہوں گے, میرٹ بیس پہ ان کا ایڈمیشنز دیے جائیں گے اور ان کو اے آئی اے پہ کام کروایا جائے گا, ان کو سکھایا جائے گا اور ان سے ریسرچز کروائی جائیں گی.
1: بالکل ایسے ہی ہے. اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 3 یونیورسٹیز بنائی جائیں گی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر کام ہوگا, تو میرے خیال سے اس سے بہت بڑا ایک مارجن ملے گا, ایک بہت بڑا گیپ فل ہوگا. ہمیں ایکسپورٹس, ہمیں اپنی جو اسکل ہے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو خدمات ہیں وہ اگر ہمیں باہر سے اگر ہم ابھی لے رہے ہیں تو وہ ہم اپنے ملک میں اس کو لے سکتے ہوں گے. بہت زیادہ فائدہ ہوگا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں. ہم نے ٹیکنالوجی پہ بات کی, فارمنگ پر بات کی. مین مقصد ہمارے اس شو کا یہ ہے کہ ہم اپنے سامعین تک وہ تمام چیزیں ٹیکنالوجی کے پہلو اور وہ تمام چیزیں بتا سکیں اور سنوا سکیں اور یہ باور کرا سکیں اور ایسی انفارمیشن آپ تک پہنچا سکیں کہ آپ اس کو استعمال کر کے پاکستان کو اور اپنا فائدہ کر سکیں. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب FM 92.6 یو سی پی کی دنیا کی جانب سے اس شو میں جس کا نام ہے نئی دنیا, ہم بہت سے اس طرح کے پہلوؤں پر بات کر رہے ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بھرپور انٹرٹین بھی ہو رہے ہوں گے اور بہت سارا فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت.

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 to life. Station of the nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: FM 92.6.
1: Number one radio station, FM 92.6. UCP की दुनिया, UCP की दुनिया. Number one radio station, FM 92.6. UCP की दुनिया, UCP की दुनिया. Number one radio station, FM 92.6. UCP की दुनिया, UCP की दुनिया.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी।

0: फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, और आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। और आज का हमारा मौजू नहायत अहम है, पाकिस्तान में दवासाजी की सनत और क्वालिटी कंट्रोल का बढ़ता हुआ रुझान। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर हसन अहमद, जो कि 2016 से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वो PhD डॉक्टर भी हैं और उन्होंने HEC और इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर मल्टीपल जो अपने आर्टिकल्स पब्लिश करवा चुके हैं, और वो फार्मा इंडस्ट्री का भी अमली तजर्बा भी रखते हैं और अपनी एकेडेमिया में भी बहुत बड़ा नाम है। जी डॉक्टर हसन, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी मैडम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने मेरा तारुफ बड़े अच्छे से करवाया और इस प्रोग्राम में आपका मदऊ करने का भी शुक्रिया। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है कि मैं यहाँ इस टाइम मौजूद हूँ।
0: जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले आप हमारे सामीन को बताएं कि आपने फार्मास्यूटिक्स के मैदान में कैसे कदम रखा, स्टार्ट आपका कैसे था?
1: मैडम, मेरी दिलचस्पी हमेशा से ये रही है कि दवा कैसे बनाई जाती है और इसकी तासीर जो है वो बेहतर कैसे की जा सकती है। फार्मेसी की तालीम हासिल करने के बाद मैंने फार्मास्यूटिक्स में PhD की, और पिछले कोई 10-15 साल में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने पाकिस्तान में इस शोबे को बहुत तेज़ी से तरक्की करते हुए देखा है। ख़ास तौर पर आजकल लोकल मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और रेगुलेटरी कंट्रोल के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और हमारी गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है।
0: जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि आजकल पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा उभरता हुआ जो शोबा ये कंसिडर किया जा रहा है। और आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में दवासाजी की सनत को उभरता हुआ शोबा हम क्यों कहते हैं और क्यों कहा जा रहा है आजकल?
1: देखिए, इसकी कई वजूहात हैं। सबसे अहम वजह जो ये है कि हमारे मुल्क में आबादी में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, उसी लिहाज से हमारी बीमारियों की शरह भी बढ़ रही है, और हुकूमत जो है वो लोकल प्रोडक्शन को भी काफ़ी ज़्यादा फ़रोग दे रही है ताकि हमारा जो इनसार बैरूनी दरामदाद पे है वो कम से कम हो सके और बैरूनी कर्ज़ों को भी कम किया जा सके। मज़ीद ये कि अगर हम लोकल प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें भी फिर हमें गवर्नमेंट इस बात पे जोर दे रही है कि आलमी मियार के मुताबिक क्वालिटी कंट्रोल और रेगुलेशंस जो हैं उनको हम अडॉप्ट करें, उनको अपनाएं, ताकि हमारी क्वालिटी दवाइयों की बेहतर हो सके।
0: जी डॉक्टर हसन, आप हमारे सामीन को बताएंगे कि ये क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है और ये दवासाजी में इसका क्या रोल है, ये क्यों अहम है और हम ये क्यों करवा रहे होते हैं?
1: ये क्वालिटी कंट्रोल का बेसिक मतलब तो ये है कि आपने दवा जब बनाई है तो उसके मियार को आपने अपने मुताबिक जांचना है कि वो महफूज भी है, मौसर भी है और यकसा भी हैं। यानी हर गोली आप जो खाते हैं उसके अंदर एक जितनी अमाउंट स्पेसिफाइड हो ड्रग की वो मौजूद हो, ठीक है, दवाई की मौजूद होनी चाहिए ताकि उसका असर बेहतर हो सके। ऐसा ना हो कि किसी दवाई में, किसी गोली में ज़्यादा दवाई जा रही है, किसी गोली में कम जा रही है, तो उससे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं। दवा तैयार होने से लेकर मार्केट में आने तक हर मरहले पर टेस्टिंग की जाती है हमारे पास ना, और ये रिक्वायरमेंट है जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जैसे ड्रैप है, FDA है, WHO है, क्योंकि ये इंसानों की सेहत का मामला है और इसमें कोई भी कमी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
0: जी तो आप क्या डॉक्टर हसन, आप हमें बता सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल के बगैर क्या हमें खतरात हो सकते हैं, और ये इसकी थोड़ी सी और इम्पोर्टेंस के हवाले से कि अगर हम ये नहीं करवाते, या जैसे आपने अभी बात की कि लोकल कंपनीज जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो किस स्टैंडर्ड तक इनको फॉलो कर रहे होते हैं, कोई गाइडलाइंस ऐसी हैं, कोई एजेंसियाँ ऐसी बैठी हुई हैं ऊपर जो इनको रेगुलेशन को मेक श्योर कर रही हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप रोशनी डालें कि क्वालिटी कंट्रोल के बगैर क्या खतरात हो सकते हैं।
1: देखिए, अगर हमने नहीं जांचा किसी दवाई को अपने मियार के मुताबिक, हर दवाई की या हर जो आपकी उसको हम कहते हैं डोजेज यूनिट की आपने नहीं टेस्ट किया प्रॉपरली, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि दवा की जो मकदार है वो किसी गोली में ज़्यादा चली जाएगी, किसी में कम होगी, तो आलूदगी आ सकती है, कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं, कोई इंसेक्ट है वो मिक्स हो सकते हैं, और या इसके अलावा आपने कोई स्टोरेज नहीं प्रॉपर की है, उसका पैकेजिंग प्रॉपर नहीं है, कोई लीकेज है कहीं पे, तो उससे क्या होगा, उससे कंटेमिनेशन हो जाएगी, उसकी आलूदा हो जाएगी वो दवाई, तो इससे फिर आपकी मरीज की सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। ये मरीज जो है वो फिर उसको डेथ भी हो सकती है, बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। इसलिए जो ड्रैप है हमारा, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, या जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो WHO है और FDA है, USFDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये इदारे हैं, ये कवानीन देते हैं, रेगुलेशंस देते हैं बेसिकली, जिसमें हम अपने जो लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको इनके कानून के मुताबिक हम रेगुलेट करते हैं, इन

0: पॉलिसी बनाते हैं, इनके स्टैंडर्ड्स पूरा उतरते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारी जो दवाई है वो अप टू द मार्क है या हमारी क्वालिटी जो है वो दवा की बेहतर है।
1: तो थोड़ा सा आप इसमें जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज हैं उसके हवाले से थोड़ा सा एम्फेसाइज करें कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये जैसे आपने बताया कि डिफरेंट मेडिसन को उनको टेस्ट करने के लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके और फिनिश गुड प्रोडक्ट्स तक, तो उसके हवाले से थोड़ा सा आप इसको एम्फेसाइज करें कि क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज में होता क्या है, कौन से टेस्ट हैं, कैसे हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, किस तरह हमें पता चलता है ड्रग्स की क्वालिटी का।
0: देखिए, हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देखें ना तो उसके दो हिस्सों में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। एक वो वाला हिस्सा जहाँ पे दवाइयाँ बन रही हैं, इन अदर वर्ड्स यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और साथ में एक पैरेलल में एक और चीज चल रही होती है हमारी, जिसको हम क्यूसी टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग हो रही होती है। अब क्यूसी लैब के अंदर हमारे पास फार्मेसी में जदीद इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जदीद मशीनें होती हैं, जैसे HPLC होता है एक, इसी तरह UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, ड्रग डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स होता है। मतलब ये डिफरेंट मशीनें हैं जो कि बेसिकली डिफरेंट दवाइयों को टेस्ट करेंगी। फॉर एग्जांपल गोलियां बना रहे हैं आप, तो उनके लिए डिफरेंट टेस्ट्स हैं। इसी तरह सिरप्स हैं, सिरप्स के लिए कुछ मुख्तलिफ टेस्ट्स हैं। तो इसमें हर बैच का सैंपल लिया जाता है जो बन रहा है, और सैंपल को फिर उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे चला के देखा जाता है। इसमें इंस्ट्रूमेंट की फिर क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक काम कर रहा हो। तो उसके लिए अलहदा से प्रोटोकॉल्स है हमारे पास के किस तरह से हम उसको टेस्ट करते हैं। जब वो एक उस मैन्युफैक्चरिंग के बाद उन टेस्ट्स में से गुजर जाती है और हम फिर देखते हैं कि हमारी डिफरेंट ऑफिशियल हमारे पास मोनोग्राफ्स हैं, जैसे फार्माकोपियाज हैं जिसे हम कहते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया हो गया, उनके अंदर एक स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हुई हैं बहुत सारे टेस्ट्स की। तो हम देखते हैं कि हमारी जो टेस्ट हमने परफॉर्म किया उसकी वैल्यूज उसके साथ मैच कर रही हैं या नहीं। तो अगर वो मैच कर रही हों तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अप टू द मार्क बन चुका है। इसी तरह से इसे मुख्तलिफ टेस्ट में से गुजारा जाता है। फिर जैसे दवा की मकदार हम डिटरमिन करते हैं, pH डिटरमिन करते हैं, कितनी देर से वो डिसॉल्व होती है, कितनी जल्दी वो डिसॉल्व होती है, उसकी प्योरिटी चेक करते हैं, उसकी हम कोई पायरोजन टेस्ट या कोई जरासीम तो नहीं चला गया उसके अंदर, ये वाले डिफरेंट टेस्ट्स वगैरह फिर हम इसके परफॉर्म करते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने माशाल्लाह काफी डिटेल में और काफी टेक्निकल चीजें भी बताई हमारे सामीन को। तो अभी इसके साथ ही हम एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, एक म्यूजिकल ब्रेक, ताकि हमारे सामीन थोड़ा फ्रेश भी हो जाएं और वो सुनते रहे FM 92.6 UCP की दुनिया। और उसके वापस शॉर्ट ब्रेक के बाद हम आके यहीं से अपनी जो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: जी वेलकम बैक लिसनर्स। अब हम दोबारा जहाँ पे हमने ख़त्म किया था, डॉक्टर हसन हमारे साथ जो गेस्ट हैं, तो अभी हम अपने प्रोग्राम को दोबारा यहीं से स्टार्ट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो जैसे आप भी एकेडेमिया ज्वाइन करने से पहले आपका एक बड़ा वास्ट आपके जो एक्सपीरियंस है वो इंडस्ट्री के अंदर भी है, आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काफ़ी काम किया हुआ है, तो आप इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों में क्योंकि काम कर चुके हैं, तो इस ताल्लुक को आप कैसे देखते हैं?
2: देखिए, ये दोनों शोबे जो है ना, चाहे आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ले लें या फार्मास्यूटिकल एकेडेमिया ले लें, ये एक दूसरे के लिए मैं समझता हूँ कि लाजिम और मलजूम है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ये इनके पास रॉ टैलेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स। जो इंडस्ट्री है वो एक अमली मैदान है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इंटर्नशिप्स हम ऑर्गेनाइज करवाएं बच्चों की, रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कोलैबोरेशन में लिखें और कोर्सेज अपडेट करें एज़ पर लेटेस्ट गाइडलाइंस, तो हमारे तलबा ज़्यादा कामयाब होंगे।
1: जी ठीक हो गया। तो आप अपने जो इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस को एकेडेमिया में कैसे शामिल कर सकते हैं, ज़रा हमारे और मज़ीद स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बता दें, क्योंकि हमारे पास
2: जो स्टूडेंट्स के पास थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, तो इस चीज़ को हम रिलेट कर सकते हैं विद सम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। जैसे मैं क्लास में कुछ अमली मिसालें देता हूँ, जैसे कोई इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई स्केल अप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ स्टेबिलिटी के इश्यूज हैं, तो डिफरेंट केस स्टडीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। इसी तरह कोई रेगुलेटरी इश्यूज है, रेगुलेटरी में CTD कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो होता है हमारा, उसकी प्रेपरेशन में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, तो ये सारी अमली मिसालें जब स्टूडेंट्स को दी जाएंगी तो उससे उनके जो नॉलेज है वो बेटर होगा और वो अच्छे तरीके से रियल टाइम जो हमारी इंडस्ट्री में चीज़ें चल रही हैं उनको, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होगी। इसी तरह क्वालिटी ऑडिट एक बहुत बड़ा फील्ड है कि हम जब ऑडिट करवाते हैं, ख़ास तौर पर जब हम किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी को अपनी इंडस्ट्री में बुलाते हैं और एक्रेडिशन के लिए अप्लाई करते हैं, लाइसेंस के लिए, कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम मैन्युफैक्चरिंग करें, हम टेस्टिंग करें, फिर उनकी वो ऑडिट, पीरियोडिक ऑडिट्स करते हैं वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ वाले, तो इन पे जब आप बात करते हैं, इनकी मिसालें देते हैं, तो एक किस्म का उनका नॉलेज भी बढ़ जाता है और उनको अमली मैदान में जो है वो फ़ायदा भी होता है। इससे तलबा को बेहतर अंदाज में समझ आती है कि इंडस्ट्री में असल काम होता कैसे है।
1: जी डॉक्टर हसन, तो पाकिस्तान में नौजवानों के लिए, हमारी यूथ जो है, स्पेशली हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में पूरा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एक हमारा जो डिपार्टमेंट है, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, तो इनके स्टूडेंट्स के लिए या बाकी जो फार्मा के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान में ये फार्मास्यूटिकल जो करियर है ये एक अच्छी च्वाइस है, एक अच्छा इंतखाब है, थोड़ा सा इस पर भी ज़रा रोशनी डालें।
2: देखिए, अगर हम बात करें स्कोप के हवाले से, तो पाकिस्तान में इस टाइम पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 700 से 800 फार्मा कंपनीज जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, यानी जिनके प्लांट्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, और इन्हें मैन पावर की, ख़ास तौर पर बासलाहियत अफराद की ज़रूरत रहती है। ख़ास तौर पर क्वालिटी कंट्रोल, अब इनके अंदर डिफरेंट शोबा जाते हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर्स और प्रोडक्शन, तो इनमें ज़रूरत रहती है इनको अच्छे हुनरमंद अफराद की, तो इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा बूमिंग प्रोफेशन इस लिहाज से ये बन जाता है।
1: फार्मास्यूटिकल साइंसेज में कौन से ऐसे शोबा जाते हैं जो सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस का जो पोटेंशियल या स्कोप ज़्यादा होता है?
2: एक्चुअली हमारे चार फील्ड्स हैं, फार्माकोग्नोसी, क्लिनिकल फार्मेसी जिसे हम फार्मेसी प्रैक्टिस भी कहते हैं, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी। तो फार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिकल्स, फार्मेको विजिलेंस और क्वालिटी एश्योरेंस, ऐसे ये हैं शोभा जात हैं जो कि लोकली जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से। इसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च में आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये सारे शोभा जात जो हैं, इनमें अगर किसी का इंटरेस्ट है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर भी ये जो हैं बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है इनमें।
1: तो जब भी हम कुछ भी करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली आपको पता है कि कुछ हमें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, तो पाकिस्तान में फार्मा इंडस्ट्री को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है अभी जो करंट सिनेरियोस जो भी चल रहे हैं उसके हवाले से?
2: देखिए, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई हैं, ड्रैप की बनने के बाद, लेकिन फिर भी हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसकी पेचीदगियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे तहकीक के लिए फंडिंग की कमी है, हमारे पास तरबियत याफ्ता अफरादी कुवत नहीं है, खाम माल की दरामद में मसाइल हैं, जैसे आपको पता है कि इम्पोर्ट वैसे ही जो है वो मसाइल का शिकार है हमारी। ये सब चैलेंजेस हैं, लेकिन इनमें ही तरक्की के मौके भी मौजूद हैं। जैसे हम लोकली अगर इन चीज़ों को प्रमोट करें तो हम इन सारी मसाइल पर काबू पा सकते हैं और जो है हम तरक्की की राह पर जो है वो चल सकते।
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो अभी करंट जो सिनेरियोज हैं, इसके अंदर हमारे यूथ जो है स्पेशली, जैसे हमारी यूसीपी के हैं या डिफरेंट एकेडेमिया के जो लोग हैं या यूथ है हमारी, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं इन चैलेंजेस को कोप अप करने के लिए?
2: बेसिकली हम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तहकीक तरबियत और इंडस्ट्री से तावन, यानी हम जिसको हम इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी लिंकेजेस कह सकते हैं, दोनों के दरमियान कोलेबोरेशन होगा तो बेहतर मसाइल का हल जो है वो निकलेगा।
1: जी डॉक्टर हसन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव हमारा एक सेशन चल रहा है और आई होप सो कि हमारी जो फार्मा के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी जनरेशन है, वो काफ़ी मुस्तफीद हो रही होगी, हमारे सामीन। तो अभी टाइम हो रहा है एक शॉर्ट सी ब्रेक का, तो अभी हम ब्रेक पे जाते हैं और सामीन आप सुनते रहे 92.6 UCB की दुनिया। तो अभी हम वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।

0: broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is
1: 92.6.
2: वेलकम बैक सामीन, अभी हम वापस आ रहे हैं और हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर हसन अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी वो गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आज के हवाले से। तो अभी डॉक्टर साहब, आप जदीद टेक्नोलॉजी जैसे आजकल AI का जमाना है और डिजिटलाइजेशन का, तो क्वालिटी कंट्रोल में ये हमारे लिए कैसे मददगार साबित हो सकती है?
3: देखिए, आजकल AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल जो है ना क्वालिटी कंट्रोल में भी बढ़ रहा है। ये टेक्नोलॉजीज हमें डेटा एनालिसिस में मदद करती हैं। मींस हमारे पास बहुत सारे जब बैचेस बन रहे होते हैं उनका बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है, तो हमारे लिए मुमकिन नहीं होता कि हम इंडिविजुअली सबको देखें। तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट स्टैट्स लगाते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, उनकी प्रेडिक्शन करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर्स ऐसे भी आ चुके हैं जिसके अंदर हम आर्टिफिशियली एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं बॉडी का, और अपनी ड्रग की जो है वो चेक कर सकते हैं कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी कैसी होगी, वो कितना असर करेगी, कहाँ कहाँ जाके। तो एक हमें एक आइडिया एक मिल जाता है, और हमें फिर जब हम उसकी रियल टाइम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और इसके अलावा हमारा जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड हो जाता है। बहुत सारे जिसके अंदर हम कंप्यूटर की मदद से सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल कर लेते हैं और प्रोसेस प्रोडक्शन का भी ऑटोमेटेड तरीके से चलता रहता है। और जब ऑटोमेशन आ जाती है तो वहाँ पे मशीन की ऑटोमेशन आ गई तो वहाँ पे इंसानी गलतियों के जो हैं चांसेस वो कम हो जाते हैं, और इसी तरह फिर हमारी जो मियार है वो एक जैसा रहता है और उसमें बेहतरी आती है।
2: जी डॉक्टर साहब, तो दुनिया में तो AI के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमारी माशाल्लाह यंग जनरेशन भी इसके ऊपर बहुत काम कर रही है, तो क्या पाकिस्तान में जो फार्मा कंपनीज हैं वो भी इन जदीद जो टेक्नोलॉजीज हैं या AI जो ये हमारी मशीन्स या जैसे अभी आपने ऑटोमेटेड मशीन्स का, क्या इनका वो इस्तेमाल कर रही हैं?
3: हाँ जी, बहुत सारी कंपनीज हैं हमारे पास जिन्होंने डिजिटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं वो मुतारफ करवाए हैं। कुछ छोटी कंपनीज भी अभी सफ़र के आगाज़ में हैं, लेकिन बट इट इज़ वेरी इननेट स्टेज, नेसेंट स्टेज। मींस इसको इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, इसके अंदर डेवलपमेंट के मौके भी हैं और काफ़ी ज़्यादा तरक्की की गुंजाइश है।
2: जी, तो हमारी यहाँ पे फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है, उसमें तलबा को क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से किस तरह आप तरबियत दी जा रही है या आप उनको किस तरह जो ट्रेन कर रहे हैं ताकि जब वो मार्केट में जाएं तो अपना एक नाम बनाएं, तो उस पर थोड़ा सा ज़रा रोशनी डालें।
3: हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज से लोगों को यहाँ पे सेमिनार्स की सूरत में बुलाते हैं और जिनका बहुत ज़्यादा तजर्बा है इंडस्ट्री का, और ताकि वो क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से सेमिनार्स में इन आगाही दें बच्चों को। इसके अलावा हम लेबॉरटरीज में अमली तरबियत, इंटर्नशिप्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह करवाते हैं तलबा को, ताकि क्वालिटी कंट्रोल के जदीद तकाजों से रोशनास हो सकें। इसके अलावा हमारे इंडस्ट्रियल विजिट्स होते हैं, वहाँ पे हम जाके मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस देखते हैं, और इसके अलावा वहाँ क्वालिटी कंट्रोल कैसे चेक हो रही है मेडिसन्स की या दवाइयों की, वो हम देखते हैं।
2: वेरी नाइस, आप लोग तो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर तो काफ़ी काम कर रहे हैं, तो हमारी जो यूथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके फार्मा इंडस्ट्री में उनके कैरियर पर्सपेक्टिव के हवाले से क्वालिटी कंट्रोल में वो किस तरह अपना वो काम कर सकते हैं, कैसे वो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से थोड़ा प्लीज़ ज़रा बताइएगा हमारे सामीन को।
3: पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर के बाद एक्सपोर्ट्स में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है फार्मा सेक्टर का। इसी तरह फार्मा सेक्टर जो है इज़ अ वेरी एस्टेब्लिश सेक्टर इन पाकिस्तान। फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल में भी क्वालिटी के अपनी जॉब्स के बहुत सारे मौके मौजूद हैं, जैसे QC ऑफिसर, QA मैनेजर, QA ऑफिसर, रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट। ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। ये शोभा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैन अलावी सतह पर भी तरक्की कर रहा है। डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिप्लोमास करवाती हैं, सर्टिफिकेशंस करवाती हैं, वो सर्टिफिकेशंस करके आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली भी रिकग्निशन एज अ QC एनालिस्ट मिल जाती है।
2: तो अभी करंट जैसे आपको पता है कि एकेडेमिया में स्पेशली जो आपके थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का बड़ा स्कोप है और होना भी चाहिए, जैसे स्टार्ट में आपने बताया भी, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी यूथ के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए आप थोड़ा सा इस पर बताएं कि कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको लर्न करना, जिनको सीखना, जिनमें उनकी एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आगे फ्यूचर में जब वो फार्मा में जाएं अपना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो उनको वो बेसिक स्किल्स वो पता हों।
3: अच्छा ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, इसमें ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को GMPs जिसे हम कहते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, एक टर्म यूज होती है जिसमें हमने गाइडलाइंस डिफाइन की होती हैं कि कम अज कम हमारी जो मेडिसिन बन रही है वो इन स्टैंडर्ड्स के बराबर होगी। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का नॉलेज होना चाहिए, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के लैब में जब हम काम कर रहे हैं क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कैसे करनी है, एनवायरमेंट में टॉक्सिक केमिकल्स कैसे डिस्कार्ड करने हैं, उनका हैजर्ड क्या हो सकता है, एनवायरमेंट को क्या नुकसान पहुंच सकता है, SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमारे जितने हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो आलात हैं खास तौर पे HPLC जिसे हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, इसके अलावा UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसके बारे में आगाही होनी चाहिए काम किस तरह करती हैं। FTIR एक अगेन टेस्ट का इंस्ट्रूमेंट है जो कि बताता है, जांच करता है कि ये दवाई कौन सी है, इसका मतलब ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से, इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वो सारे उसके बारे में बेसिकली स्ट्रक्चर बताता है। इन सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप एक अच्छे QC एनालिस्ट के तौर पे काम करें।
2: थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हसन, बड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव आपका सेशन चल रहा है, बहुत सी चीजें अभी हमें लर्न करने को मिली है। और अभी आप प्लीज हमारे तलबा, हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको अगर कोई पैगाम देना चाहते हैं तो?
3: नौजवानों के लिए मेरा यही पैगाम है कि सीखने का जज्बा रखें, सिर्फ डिग्री पर ना रुकें, इंटर्नशिप्स करें, रिसर्च में हिस्सा लें, नए रुझाना से खुद को अपडेट करें और अपना काम किसी ना किसी फोरम पे पब्लिश कराने की कोशिश करें ताकि आपको एक रिकॉग्निशन मिल सके।
2: जी, और ये जो हमारा FM 92.6 UCP की दुनिया, इस फोरम से अगर जो हमारे सामीन कराम जो इस टाइम हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ है, आम आवाम के लिए अगर आप दुआ के इस्तेमाल के हवाले से कोई पैगाम देना चाहते हैं तो प्लीज?
3: हमेशा रजिस्टर्ड फार्मेसी से दवा खरीदें, खुद इलाज से परहेज करें, जाली दवाओं से होशियार रहें, आवाम की आगाही ही मियार को बेहतर बनाने में मदद दे सकती है। कोई प्रॉब्लम आता है उसका एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, उस रिपोर्टिंग सिस्टम कंप्लेंट के लिए आप जो है वो इंडस्ट्री से या डिफरेंट फोरम्स पे रब्ता कर सकते हैं।
2: जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हसन के आपने अपना इतनी मसरूफियत में से टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे सामीन को, हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपने बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव एक सेशन दिया है। बहुत सी हमने नई चीज़ें आपसे सीखी हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आपसे सीखने को मिली हैं। तो हम आपको मज़ीद आपकी कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाएँ पेश करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैनेजिंग योर टाइम, फॉर योर प्रीशियस आवर। थैंक यू
3: जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं UCP FM 92.6 में आया और आप लोगों ने मुझे बात करने का मौका दिया।
2: जी सामीन कराम, और इसके साथ ही हम जो अपने प्रोग्राम का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं और फिर इंशाल्लाह फिर हम दोबारा आपसे जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ यहाँ पे आएंगे और फिर आपके साथ जो है ना एक और प्रोग्राम आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच आपका सुनने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, और इसी तरीके से आप सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

इसके अलावा पटियाला घराना बड़ी अहमियत का हामिल है, जिसकी नुमाइंदगी अमानत अली खान और शफकत अमानत अली अरब के मकबूल सितारे रागा बॉयज कर रहे हैं। ये वो चंद मौसीकार हैं जो क्लासिकल मौसीकी के पहचान हैं और इनका गाया हुआ हर राग अपनी मिसाल आप है।

नाजिया पॉप म्यूजिक की वो मौसिकार थी जो इस दुनिया फानी से कूच कर जाने के बाद भी अपनी आवाज को अमर कर गईं। आज पॉप इंडस्ट्री आसमानों की बुलंदियों को छू रही है और पॉप गुलुकार और फनकार न सिर्फ अपनी मुनफरद गायकी की बदौलत पाकिस्तान में बल्कि बॉलीवुड में भी अपने सुरों के जादू से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। कहते हैं दिल से दिल तक बात जल्दी पहुंच जाती है, लेकिन दिल से रूह तक जज्बात को जगाने के लिए मौसीकी ही एक खूबसूरत जरिया है। मौसीकी इंसानी जज्बात की अकासी कुछ इस अंदाज से करती है कि इंसान अपने अंदर छुपी खुशी या गम को बेहतर अंदाज से महसूस करता है। इसीलिए कहा जाता है कि मोहब्बत जिंदगी का साज है और रूह की ताजगी और साज सिर्फ और सिर्फ मौसीकी से है।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: पहचान,
0: एक नई लगन,
1: नई लगन।
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
2: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: करोगे?
1: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
2: खबरदार, छूना मना है।
3: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: न्यूज़।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
0: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.
3: In sadaye Lahore, in sadaye UCP as. Lotfan goosh bedahid FM 92.6 jahane UCP.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतल्लिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

0: सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।
1: देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे, देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा। अब बस पकड़ो।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा।
1: बाकी?
0: हाँ।
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें।
1: खबरदार, छूना मना।
3: وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke duniya.

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इतला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर रابطہ करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

WHO की हालिया तहकीकात के मुताबिक पूरी दुनिया में 2.2 बिलियन अफराद आँखों के मसाइल से दोचार हैं। लिहाजा आप भी एहतियाती तदाबीर अपनाकर अपनी आँखों की हिफाजत कीजिए। अपनी आँखों को गर्दो गुबार और आलूदगी से बचाएं। कंप्यूटर पर काम करते हुए मुसलसल आँखें कंप्यूटर पर मरकूज ना रखें। आँखों का बाकायदगी से मुआयना करवाएं। बच्चों को नोकीली चीजों से हरगिज न खेलने दें। मोबाइल के बेजा और मुसलसल इस्तेमाल से गुरेज करें और घर आते ही फौरन आँखों को ताज़ा और ठंडे पानी से धोएं। इसके अलावा खाने में मुतवाजन गजा और विटामिन ए से भरपूर खुराक इस्तेमाल करें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से पेश किया जा रहा है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
2: UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: पहचान,
0: एक नई लगन,
1: नई लगन।
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की,
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
1: UCP No. 1।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
2: UCP की दुनिया।
1: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Radio.